जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। यह वाक्य हमें बताता है कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को बदलने की

0: आवश्यकता है। जब हम दूसरों की शिकायतें करते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारे जीवन में तनाव, चिंता और अशांति बढ़ सकती है। खुद को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बदलते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कारपेट बिछाने की सादृश्यता हमें बताती है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को बदलना अधिक आसान और प्रभावी है।
1: नमस्कार श्रोताओं, सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को एक नई उम्मीद, नई हिम्मत और नई मुस्कान के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह हमें एक और मौका देती है बेहतर बनने का और बेहतर करने का। आप सभी को एक खूबसूरत और सफल दिन की शुभकामनाएं। सुप्रभात, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है। आज जून 2026 की 13 तारीख है और हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 को पार हो चुके हैं और इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग एवं तकनीकी अभियंता ताना आतुम। और अपनी आवाज के साथ मैं आपकी आरजे बिंदुंग दिंदोमांच। श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रभातकालीन प्रसारण सभा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। दोस्तों, ठीक 6 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए, जिसके बाद 6:10 पर प्रसारित होगा भक्ति गीत का ये स्पेशल प्रोग्राम। 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार, जिसके बाद 6:45 पर प्रसारित होगा सुबह सवेरे का हमारा खास कार्यक्रम। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:15 पर हम लाएंगे आपके लिए मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम का कार्यक्रम, बताएंगे आपको लोकल न्यूज, हमारे लोकल डेली से इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। 7:35 पर श्रोताओं आप सुनेंगे तायन भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:40 पर हम लाएंगे सदाबहार का हमारा खास कार्यक्रम, देंगे आपको वेदर अपडेट्स, सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों का छोटा सा सौगात। ठीक 8 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद 8:30 पर आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। दोस्तों, 8:40 पर हम लाएंगे हेलो ईटानगर का कार्यक्रम, बात करेंगे हम कुछ बेहतरीन टॉपिक

0: एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 10:10 पर प्रसारित होगा आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर हम वही प्ले करते हैं जो आपके दिल के है करीब। तो तुरंत हमें मैसेज कीजिए, अभी नंबर है 9436887808। इस नंबर पर आप हमें जो सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजेंगे वही प्ले होगा सुबह के 10:10 के हमारे रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में, जिसके बाद दोस्तों आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। दोस्तों, अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले

नमस्कार प्रिय श्रोतागणों, सुबह के इस पवित्र और सुहानी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय है हमारा विशेष प्रस्तुति भक्ति गीत का, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की महिमा, श्रद्धा और प्रेम से भरे मधुर भजन और भक्ति गीत। इस सुप्रभात में जब प्रकृति धीरे धीरे जाग रही है, आइए हम भी अपने मन को पवित्र विचारों और भक्ति रास में भर लें। कुछ पल के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का भक्ति गीत और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बने रहे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आती रहे।

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत का कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे गालो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर है।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर लुयोपोल गे लोरी गोला लोम तेरे अरलो गालो में के नगम मेंजी दोनसी लुपर गादु लोरी सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अनिलो क्रूड ऑयल गला नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन ओके प्रोडक्शन लगावे असम ओके नागालैंड सरकार एमओयू गो साइन रिवा।

आमका एमओयूएम यूनियन होम मिनिस्टर अमित सामु दुगेला पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा ओक मई काउंटर पार्ट नेफ्यू रियो मुनु साइन रुबाम टू साइन रुबाम नाम एम हिस्टोरिक मोमेंट गबे मेंदुला जिगी देश जगो ऑयल ओके नेचुरल गैस एम एक्सप्लोर दबे अलजा मोरेकु एला मिनिस्टर सामु जबतु रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी मु जोग पोलोगे लोरीगोला लोंगोना कोतलो शिलोंग लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लगावे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओके कनेक्टिविटी फेलेलो दिनचिबे काजी ताजी नाम लगावे पहले जिरे ओगो मिनिस्टर में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर NEIIFRA समिट एग्जीबिशन रिदाकलो सीईओस राउंड टेबल एम लारिटी परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर शिलोंग लो दुलिक जिरे नरेंद्र मोदी ग सरकार निरगोला न्यूनी कुनाम लो मेरो ईटानगर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन ओके मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम गो ईटानगर लो रिगतो ओगो एमएलए तेचिकाचोम लरी सरकार गे नगिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओके वेलफेयर इनिशिएटिव लोके देश ओके अरुणाचल स्टेट एम आंगुमकुनाम एम कोइकला जापतु केन लोटार्स देलो दुईमुग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओके गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दोगोदोइर रूलो जॉइंट मार्केट इंस्पेक्शन ओके एनफोर्समेंट ड्राइव गो रिगतो ड्राइव एम ट्रेडिंग लाइसेंस एम वेरीफाई नाम लगावे याकुयारा पुकुप नम चेक दबे ओके स्कूल नीचे रूलो टोबाको दोदिक दबेक न बीरी चादा पुंगमो मादबे मोतुम नाम लो लोदुम गतु ओगो दुकान वेलिड लाइसेंस का मानम अपिन पीनगो ओके लाइसेंस एक्सपायर ने पिनुम गो गाक पाला 3000 गो फाइन लातु मेनकेन अगम सिमनुन आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोके तपादु अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ए दापोरिजो टाउनशिप आरालो सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीएम फॉर्मुलेशन रिनाम लगाबे कंसल्टेटिव केबागो स्टेक होल्डर्स एम दापोरिजो गे टीसीएस हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हॉल लो दुगेतो केवालो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एचओडीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट एसोसिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस ओके स्टेक होल्डर्स एम गोकुमला मुनु दापोरिजो टाउन सी फ्लो वेस्ट मैनेजमेंट एम रिदार कादार गला एनवायरमेंट एम काकेन ब दरक ब दोमो जालो कादिक जाबे जिगमिन कोगमिन जिन्यातु तावंग लोसिंग डीसी नामगेल आंगमोमो मेरो डीसी ऑफिस लोक एम्प्लॉयज नारुएम दुकुम गला वेस्ट मैनेजमेंट ओके एनवायरमेंट एम रिदेन कादेन गराब रेस्पॉन्सिबल लाला बुबाब रिगमेंग गबा दुग बेनी दुकुम नम एड्रेस दुला डीसी आंगमोमो मेनपा जिला सुप्रीम कोर्ट ग डायरेक्शन लो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एम आग जुरिसडिक्शन लो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एम बुबाब रिगदब मेनतु एजितु मुन्नम से नो टू सिंगल प्लास्टिक कैरी बैग एला मेन्दुला लीड गदब तमसिरतु ओके बोतल टू लीटर एम तरियायान रू एम बंदो दोयक रेकु एजितु ईटानगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर ए अरुणाचल ग 15 डिस्ट्रिक्ट एम येलो अलर्ट जितु मेनला डिस्ट्रिक्ट गदिलो दोरे दोगुम ओके दोराग राग दला निदो तीतरे एजितु इंडियन शूटिंग कोच ओके फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा मु अनु चामनी गोला कोना तोला जिकाकु एतादिबाम तो अनु चाम्पी गोला अनु कोना तोला जिकाकु राणा मु केन्यो दिल्ली हॉस्पिटल लो जागबिन जितकु एला नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह देव मु मेनपा जितु जसपाल गे जिकु नामने पीएम मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ओके केव केव लीडर्स गद दुख आगमम जिलुक न्यातु चांगलांग लो एस आई आर 2026 पेज 3 लगावे 56 चांगलांग साउथ एस टी असेंबली कॉन्स्टेंसी लोक बी एल ओस गद फाइनल कॉन्फ्रिहेंसिव ट्रेनिंग जिनाम एम आल जाबे रुचुम ग काकु प्रोग्राम एम एन एल एम टी काम ई आर ओ रोसालिन परमेला ई आर ओ गामजार डोके मुनिरुग मेंगला बी एल ओस एम एस आई आर आर
2026.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्रभातकालीन कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मैं हूं आपकी आरजी साथी मांच। हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है एक नई उम्मीद, नए सपने और नई ऊर्जा। और अगर दिन की शुरुआत स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच के साथ हो तो पूरा दिन बेहतर बन जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य, योगा, व्यायाम और जीवन शैली की। हम जानेंगे कि किस तरह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, बातें करें, बातचीत, इससे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या सा क्या से दीवाना मैं चला। चलिए दोस्तों, एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अक्सर हम अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब सेहत साथ होती है तब हर मुश्किल आसान लगती है। अच्छी सेहत के तीन मूल मंत्र हैं: संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम। सुबह उठकर एक ग्लास गुनगुना पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। दिन भर कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। सीजनल फल और सब्जियां हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं। आज का स्वास्थ्य सूत्र ये है दोस्तों कि फास्ट फूड से ज्यादा फास्ट रिकवरी प्राकृतिक भोजन से मिलता है। आगे हम बात करेंगे योगा, शरीर और मन के संतुलन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, परेश पहुजा की आवाज में। दोस्तों चलिए सुनते हैं दूरो दूरो अनप्लग्ड।

दोस्तों, योगा सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने की कला है। रोजाना योग करने की कुछ लाभ मैं आपको बता दूं तो, तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आइए कुछ सरल योग क्रियाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि सबसे पहला है तदासन। दोस्तों, तदासन को कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को ताने का प्रयास करें। फिर एक आता है वृक्षासन। एक पेड़ पर संतुलन बनाकर खड़े होना एकाग्रता बढ़ाता है। फिर भुजंग आसन, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और कमर दर्द में राहत देता है। ध्यान रखें कि योग हमेशा खाली पेट और शांत वातावरण में करना चाहिए। आप चाहे तो तदासन, वृक्षासन और भुजंग आसन के पोजेस को गूगल में या यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सही में बहुत ही फायदेमंद है। फिर चलिए अब बात करते हैं प्राणायाम की और प्राणायाम की शक्ति के बारे में। कहते हैं सांस ही जीवन है। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। कुछ प्राणायाम है जैसे अनुलोम विलोम, जिसे 5 से 10 मिनट अगर आप रोज करें तो आपकी लंग कैपेसिटी, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग सब बेहतर हो जाएंगे। फिर आता है कपालभाति, जो कि पेट और डाइजेशन तंत्र के लिए लाभदायक है। ब्रह्मारी करके भी एक प्राणायाम है, जो कि मानसिक शांति और तनाव नियंत्रण में सहायता देता है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। महसूस कीजिए कि तनाव आपसे दूर जा रहा है। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आपको जरूर कहूंगी कि प्राणायाम और कुछ योग आसन जरूर ट्राई करें और हमें बताइए कि कैसा लगता है। अपनी सेहत में किया गया निवेश सबसे अधिक लाभ देने वाला निवेश होता है। सुबह की ताजी हवा शरीर और मस्तिष्क दोनों को ऊर्जा देती है, इसीलिए मॉर्निंग वॉक को डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट हमेशा पुश करते हैं, बताते हैं उनके फायदे। चलिए आज मैं भी आपको बता देती हूँ कि मॉर्निंग वॉक के क्या फायदे हो सकते हैं। मॉर्निंग वॉक से दोस्तों दिल स्वस्थ रहता है, आपका वजन यानी वेट नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और मूड भी अच्छा रहता है। अगर आप वॉक नहीं कर पाते तो घर पर ही स्पॉट जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग, लाइट एरोबिक्स कर सकते हैं। याद रखिए, शरीर को चलाते रहेंगे तो शरीर आपका साथ देती रहेगा। दोस्तों, एक व्यक्ति रोज बहाने बनाते था कि उसके पास व्यायाम यानी एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है। एक दिन डॉक्टर ने कहा उससे कि आज आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कल बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। उस दिन से उसने रोज सिर्फ 20 मिनट चलना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सेहत में अद्भुत सुधार आया। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, मेरे ही फ्रेंड के पापा के साथ ये हुआ था और आज मैंने आपके साथ उसे शेयर कर दिया। सही में अगर आप आज एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालेंगे तो बाद में आपको मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर्स के चक्कर काटने में समय निकाल

करना होगा। तो दोस्तों सिर्फ 20 मिनट भी अगर आप निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिए और अपने सेहत का ध्यान दीजिए। दोस्तों सेहत किसी दुकान में नहीं मिलती, ये हमारी रोजाना की आदतों का प्रणाम है। हर दिन थोड़ा योगा, थोड़ा व्यायाम, संतुलित भोजन और सकारात्मक सोच अपनाकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसी संदेश के साथ दोस्तों हमारे सुबह सवेरे के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना है। मैं आपसे कहूंगी कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों चलिए सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम का अंत करते हैं एक और प्यारे से गीत से। सुनते हैं फिल्म अतरंगी रे से रेत जरासी अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की आवाज में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपातानी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों स्वागत है आपका मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम के कार्यक्रम में। आज मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम में दोस्तों एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है, तो ध्यान से सुनिए। द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू वेरियस ट्रेड्स ऑफर्ड एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs अक्रॉस द स्टेट, परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज डिपेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर undertaking employees residing in this state may apply. Candidates may be at least 14 years of age and fulfill the eligibility criteria prescribed for their chosen trade. Admission will be based strictly on merit, considering marks obtained in class 10 for matric trades and class 8 for non-matric trades. Interested candidates are required to submit their application online through the department's official portal. Detailed information regarding available trades, eligibility criteria, fee structure and admission procedures can be found in the admission brochure available on the department website. For further information, candidates may contact the nearest ITI or concerned officials of their respective institutes. Don't miss this opportunity to gain valuable technical skills and build a brighter future through vocational education. ध्यान दीजिए प्रिय श्रोताओं, अरुणाचल प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITI में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी तथा राज्य में निवास करने वाले केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के आश्रित इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और चुने गए ट्रेड के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगी। मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 10 के अंक और नॉन मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 8 के अंक को आधार माना जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार डिपार्टमेंट के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उपलब्ध ट्रेड्स, पात्रता, फीस और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तारपूर्वक जानकारी एडमिशन ब्रोशर में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम ITI या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। कौशल विकास के माध्यम से अपने भविष्य को मजबूत बनाने का ये सुनहरा अवसर हाथ से न जाने दें। आज ही आवेदन करें। दोस्तों चलिए मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम में अब सुनते हैं हम एक प्यारा सा गीत फिल्म चलते चलते से, सुनो ना सुनो ना।

दोस्तों, और अब समय हो गया है हमारे प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालने का। पहले खबर आई है अरुणाचल के लिए विशेष नीति समर्थन की मांग। मुख्य

मंत्री पेमा खांडू ने न्यू दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और सीमावर्ती महत्व को देखते हुए विशेष नीति सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2047 तक 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सड़क संपर्क, ग्रामीण विकास, प्रशासनिक सुधार और अलग ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर की आवश्यकता पर भी अपने विचार रखे। बैठक में नीति आयोग ने राज्य की चिंताओं पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिया। दूसरी खबर आए है टोनी कोयू को लूमरदाई साहित्य पुरस्कार। पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित लूमरदाई लिटरेरी अवार्ड 2026 साहित्यकार टोनी कोयू को प्रदान किया गया। इस अवसर पर साहित्य, भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिट्टी ने कहा कि साहित्य हमारी पारंपरिक ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में कई प्रमुख साहित्यकारों और सांस्कृतिक योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, तवांग में 1962 युद्ध काल का मोर्टर शेल मिला। तवांग के लेब्रांग क्षेत्र में 1962 के समय का एक जीवित और विस्फोटक मोर्टर शेल मिला है। पुलिस और भारतीय सेना की बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए इसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। तवांग के पुलिस अधीक्षक तासी दारांग ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को भी इस प्रकार की कोई संदिग्ध या पुरानी विस्फोटक वस्तु मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे और उसे छूने का प्रयास ना करे। सीमावर्ती इलाकों में ऐसे युद्धकालीन गोला बारूद कभी कभी मिलते रहते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हमारे प्रदेश से। आप सुन रहे हैं दोस्तों मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम का ये कार्यक्रम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं एक बेहतरीन संगीत फिल्म सैयारा से, उस फिल्म का टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अब आप सुनेंगे तागिन भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम सदाबहार का, जहाँ हम बात करते हैं मौसम की, नेचर के, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले चलिए चलते हैं मौसम का मिजाज जानने को, नजर डालते हैं कि आज के मौसम का हाल चाल क्या रहेगा। राजधानी ईटानगर और आसपास के इलाकों में आज दिन भर बादलों का ढेरा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार रुक रुक कर बारिश होने की पूरी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल सुबह के समय तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा पूर्वी दिशा से हल्की रफ्तार से चल रही है, जिस कारण मौसम में नमी और ठंडक बनी हुई है। सुबह 8 बजे से दोपहर तक बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। विशेष रूप से 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक के बीच में मध्यम बारिश हो सकती है। इसीलिए जो श्रोता दफ्तर, स्कूल या बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूले। शाम के समय भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश जारी रहने का आसार है। रात का मौसम ठंडा और सुहाना रह सकता है। चलिए अब जानते हैं अगले कुछ दिनों का मौसम। आने वाले हफ्ते में भी अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून का प्रभाव बना रहेगा। रविवार और सोमवार को भी बारिश के आसार है। तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हफ्ते के मध्य तक बादल और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इस दौरान हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूरे शबब पर नजर आएगा। किसानों के लिए सलाह है, ये मौसम खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। किसान भाई बहन मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कार्यों की योजना बना सकते हैं। हालांकि अधिक बारिश होने वाले क्षेत्र में पानी निकासी पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए साफ और उबला हुआ पानी पिए, गीले कपड़ों में ज्यादा देर ना रहे, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं और गर्म और ताजा भोजन का सेवन करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉनसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में से एक है। यही बारिश राज्य की नदियों, वन संपदा और समृद्ध जैव विविधता को जीवन देती है। तो दोस्तों, बारिश की बूंदों का आनंद लीजिए, लेकिन सुरक्षा और सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। मौसम चाहे जैसा भी हो, आपकी मुस्कान बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं सदाबहार के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म रॉकस्टार से ए आर रहमान और जावेद अली की आवाज में, कुन फाया कुन।

दोस्तों, बारिश का मौसम प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। जब पहली बूंदे धरती को छूती है तो मिट्टी की खुशबू मन को एक अलग ही सुकून देती है। अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति ने खुले दिल से नवाजा है। यहाँ के घने वन, नदियाँ, पहाड़ और रंग बिरंगे फूल हमारी प्राकृतिक विरासत है। क्या आप जानते हैं, एक बड़ा वृक्ष एक साल में इतनी ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है कि 2 से 4 लोगों की सांस की आवश्यकता पूरी हो सके। इसीलिए वृक्ष केवल पेड़ नहीं बल्कि जीवन का रक्षक है। आज दोस्तों, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ ऑर्किड के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में ऑर्किड की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। इनकी सुंदरता और रंगों की विविधता दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। ऑर्किड हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी खूबसूरती और विकास संभव है। और आपको तो पता ही है, ऑर्किड है ही हमारे प्रदेश का स्टेट फ्लावर। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, बदले में हमसे सिर्फ संरक्षण मांगती है। आइए दोस्तों, श्रोताओं, संकल्प लें कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, एक पेड़ जरूर लगाएंगे, जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, अपने आसपास सफाई बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज के हमारे सदाबहार कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने चर्चा की, बात की, बताया आपको मौसम का हाल, हमने चर्चा की फूलों के बारे में, नदियों नालों के बारे में, मौसम के बारे में, हमारे किसानों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और हमारे पर्यावरण के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मनोरंजक बातें सुनते रहना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम हमेशा हर रोज ऐसे ही रोमांचक मनोरंजक बात करते ही रहते हैं। चलिए अब दोस्तों, हमारे सदाबहार के इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से, कुछ ना कहो। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे

0: गए थे तीन भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
6: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

0: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's seventh official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Iran, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for the bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship, with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruti from Bratislava, has filed this report.
4: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. The visit will further reinforce India's commitment to strengthening cooperation with European Union member states. Midi M. Paluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
2: Defence Minister Rajnath Singh today congratulated Defence Research and Development Organisation DRDO for successfully conducting three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered defence against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range. In a social media post, the minister said that these tests have put India in elite group of nations having ballistics missile defence capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations' defense capabilities against different types of enemy threats. The passing out parade is being held today at the Indian Military Academy, IMA, in Dehradun, the capital of Uttarakhand. President Draupadi Murmu is attending the occasion and has reviewed the parade. This year's passing out parade is historic, as for the first time, women cadets are passing out alongside gentlemen cadets from the academy. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
5: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished and is rooted in tradition and open to the world. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सभी का स्वागत है हेलो ईटानगर के हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं हूं आपकी RJ मांझ। तो चलिए हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म कबीर सिंह से बेख्याली।

दोस्तों, अक्सर जब हम करियर की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले सुनाई देता है, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग। डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना निश्चित रूप से एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण करियर है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि सफलता सिर्फ इन दो रास्तों तक सीमित नहीं है। हर साल लाखों विद्यार्थी एमबीबीएस और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेते हैं, लेकिन सभी का चयन संभव नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी युवाओं के सपने खत्म हो गए। दुनिया बदल रही है, रोजगार के नए क्षेत्र उभर रहे हैं। आज का नियोक्ता या एम्प्लॉयर केवल डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और काम करने की क्षमता भी देख रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम एक करियर को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें। किसी को कंप्यूटर पसंद है, किसी को गाड़ियों और मशीनों के साथ काम करना पसंद है, किसी को फोटोग्राफी और डिजाइनिंग में रुचि है, तो किसी को लोगों से मिलना जुलना और टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है। किसी को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल काम में महारत हासिल करनी होती है। हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग होती है। करियर का चयन दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है। आज भारत में हाईवेज बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज तेजी से बढ़ रही है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का विस्तार हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ट्रेंड टेक्नीशियंस और स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। इसीलिए ITI और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जैसे कि सर्वेयर। सर्वेयर किसी भी सड़क, पुल, बिल्डिंग या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बुनियाद तैयार करता है। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले भूमि का नाप झोक और मैपिंग सर्वेयर्स ही करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सर्वेयर्स की मांग भविष्य में और बढ़ने वाली है। बात करते हैं ड्रॉट्समैन सिविल की। अगर आपको ड्राइंग और प्लानिंग पसंद है तो ड्रॉट्समैन सिविल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शों पर काम करते हैं। फिर आते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग टेक्नीशियन। आज घरों, होटेल्स, हॉस्पिटल्स और ऑफिसेस में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की मांग लगातार बढ़ रही है। स्किल्ड टेक्नीशियंस की कमी के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी अच्छे हैं। सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी का है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भारत भर में तेजी से बढ़ रहा है। सोलर टेक्नीशियंस की मांग आने वाले वर्षों में और बढ़ने की

संभावना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ये कोर्स नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। डिजिटल इंडिया के युग में इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की जरूरत हर जगह है। बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। आज हर स्कूल, ऑफिस और संस्था कंप्यूटर्स पर निर्भर है, लेकिन कंप्यूटर्स को मेंटेन करने वाले ट्रेन प्रोफेशनल्स की भी उतनी ही जरूरत होती है। ये कोर्स रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अवसर प्रदान करता है। टूरिज्म, अरुणाचल का उभरता हुआ करियर सेक्टर। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म की संभावनाएं अपार है। टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट जैसे कोर्सेस युवाओं को एक उभरते हुए सेक्टर से जोड़ते हैं। कल का टूरिस्ट सिर्फ पहाड़ देखने नहीं आता, वो स्थानीय संस्कृति, भोजन, परंपरा और कहानियां भी जानना चाहता है। युवा गाइड और टूरिज्म प्रोफेशनल्स इस बढ़ते हुए बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। क्रिएटिव करियर्स भी है महत्वपूर्ण, जैसे डिजिटल फोटोग्राफर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिभा और क्रिएटिविटी को महत्व दिया जाता है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फिल्म्स, ऑनलाइन कंटेंट और फैशन इंडस्ट्री में आज कई नए अवसर उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज सिर्फ नौकरी ही सफलता का एकमात्र मापदंड नहीं है। एक इलेक्ट्रिशियन अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, एक वेल्डर अपनी फैब्रिकेशन वर्कशॉप खोल सकता है, एक फोटोग्राफर अपना स्टूडियो शुरू कर सकता है, एक प्लम्बर या कारपेंटर स्वरोजगार के माध्यम से अच्छी आय कमा सकता है। कई बार एक कुशल टेक्नीशियन की आमदनी किसी सामान्य नौकरी से अधिक हो सकती है। कई बार हम बच्चों पर अपने सपने थोप देते हैं। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता और ना ही सबको बनना चाहिए। बच्चों की रुचि, प्रतिभा और क्षमता को समझना भी उतना ही जरूरी है। जब करियर पसंद से चुना जाता है, तब सफलता और संतुष्टि दोनों मिलती है। अगर मैं अपने ही बात करूं, तो मेरे भी पेरेंट्स चाहते थे, मेरे भी फैमिली चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मुझे कोचिंग भी करवाया, लेकिन मेरा मन था कम्युनिकेशन में। मुझे बात करना पसंद है, मुझे लोगों से जुड़ना पसंद है, मुझे आपसे बात करना पसंद है, मुझे इधर उधर की बातें करना पसंद है। तो मैंने चुना मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। आज मैं यहाँ बैठकर आपके साथ बात कर रही हूँ। मैं खुश हूँ कि मैंने अपने करियर, अपने लाइफ के लिए जो चुना है, उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। और साथ ही मेरे पेरेंट्स भी जब मुझे ऐसे इच्छुकता के साथ काम करते हुए देखते हैं, वो भी अंदर से और बाहर से भी काफी खुश होते हैं मेरे लिए। तो पेरेंट्स के लिए मेरे तरफ से संदेश है कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उन्हें ध्यान दें, क्योंकि आखिरकार एज अ पेरेंट आप बस उनकी संतुष्टि ही तो चाहते हैं। दोस्तों, करियर का मतलब सिर्फ एक डिग्री नहीं है। करियर का मतलब है अपनी पहचान बनाना, अपने हुनर को पहचानना, अपने सपनों को साकार करना। यदि आप MBBS या IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी लगन से कीजिए। लेकिन यदि आपका रास्ता अलग है, तो उससे कम ना समझिए। सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। एक अच्छा टेक्नीशियन, एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक कुशल फोटोग्राफर, एक प्रतिभाशाली डिजाइनर, एक महारथी इलेक्ट्रिशियन और एक समर्पित टूरिस्ट गाइड भी समाज और देश के विकास में उतना ही योगदान देता है जितना कोई डॉक्टर या इंजीनियर। याद रखिए, डिग्री आपको पहचान दे सकती है, लेकिन हुनर
आपको पहचान बनाए रखने की।

0: ताकत देता है। दोस्तों इसी के चलते मैं एक और बार आपके आपके सामने इस अनाउंसमेंट को रखना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITI में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी तथा राज्य में निवास करने वाले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के आश्रित इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और चुने गए ट्रेड के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगी। मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 10 के अंक और नॉन मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 8 के अंक को आधार माना जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार डिपार्टमेंट के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उपलब्ध ट्रेड्स, पात्रता, फीस और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी एडमिशन ब्रोशर में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम ITI या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। कौशल विकास के माध्यम से अपने भविष्य को मजबूत बनाने का ये सुनहरा अवसर हाथ से ना जाने दे, आज ही आवेदन करें। दोस्तों अगर आप skill.arunachal.gov.in में जाकर चेक करें तो आप देख सकते हैं कई सारे कोर्सेस अवेलेबल है, कई सारे सीट्स अवेलेबल है। हमारे अरुणाचल में 60 ITI है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कोनों में बहुत सारे ITIs है, तो आप तुरंत ही ज्वाइन कीजिए क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप सभी इसका अवेल जरूर कीजिए और याद रखिए कि आपका फ्यूचर आपके ही हाथ में है। तो दोस्तों आज के हेलो ईटानगर के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। शायद मैंने किसी को मोटिवेट किया हो या किसी को हौसला दिया हो, तो उसी के लिए मैं यही हूँ, मैं यहाँ हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति M की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत

0: क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को निर्धारित नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन को किसी भी तरह से प्रभावित करने या बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को समृद्ध परमाणु ऊर्जा सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. On the second leg of his visit, Mr. Modi will pay a visit to Slovakia. He will hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, and explore new avenues of cooperation. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Avignon, France, on 16th and 17th of this month. During the summit, he will exchange views with G7 leaders and those from invited partner countries and international organizations participating in the summit. On the final leg of the visit, the Prime Minister will visit Paris on 18th June for further bilateral engagements and to attend the Europe's largest technology and startup event, WeaverTech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. Prime Minister's presence at the G7 reflects India's standing as a leading voice of the Global South and a key partner in addressing global challenges. Defense Minister Rajnath Singh today congratulated Defense Research and Development Organization DRDO for successfully conducting three consecutive flight tests to demonstrate multi-layer defense against long-range ballistic missiles.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब वक्त हो चला है फिल्मी गपशप का, जहां हम बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से नए गॉसिप्स घूम रहे हैं बॉलीवुड की फिल्मी गलियों में, कौन से नए फिल्म्स हो रहे हैं सुपरहिट, और साथ ही हम सुनते हैं म्यूजिक, बहुत सारा, ढेर सारा म्यूजिक। दोस्तों, आज के इस फिल्मी गपशप की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले के साथ, एक रिलैक्सिंग मोमेंट। अगले कुछ मिनट हम लेकर आ रहे हैं एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले फ्रॉम द फिल्म बल्ले बल्ले अमृतसर टू LA। ये फिल्म एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलता है। फिल्म में ऐश्वर्या राय, मार्टिन हैंडरसन और अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया है। कहानी एक पंजाबी परिवार के आसपास घूमती है और इसमें प्यार, फैमिली वैल्यूज और कल्चरल डिफरेंसेस को बड़े ही एंटरटेनिंग अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म का म्यूजिक काफी वाइब्रेंट है, जहां पंजाबी बीट्स, बॉलीवुड मेलोडीज और थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेवर एक साथ सुनने को मिलता है। शायद आपने इस फिल्म के गाने ज्यादा ना सुने हो, लेकिन यही तो मजा है रेडियो का, कभी कभी कुछ नए गीत भी दिल को छू जाता है। तो अगर आप अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर रहे हैं, सफर पर हैं या घर के काम में व्यस्त हैं, बस वॉल्यूम तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और म्यूजिक का मजा लीजिए। मैं हूँ आपकी आरजे साथी मंच, और अब शुरू करते हैं फिल्म बल्ले बल्ले अमृतसर टू LA के गीतों का ये खास नॉन स्टॉप सिलसिला।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है बॉलीवुड की दुनिया से कुछ ताजा अपडेट्स का। सबसे पहली खबर फिल्म मेकर इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शार्वरी वेडांग रायना और वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह नजर आ रहे हैं। फिल्म एक इमोशनल कहानी लेकर आई है जो प्यार, यादों और पार्टीशन के दौर से जुड़ी भावनाओं को पर्दे पर दिखाती है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं और खासकर दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। इम्तियाज अली ने भी कहा है कि फिल्म

उन लोगों की कहानियों से प्रेरित है जो पार्टीशन के बाद अपनी यादों और रिश्तों को दिल में संभाले रहे हैं। अब बात करते हैं कॉमेडी लवर्स के लिए एक बड़ी खबर की। अजय देवगन स्टारर धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। ट्रेलर में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी एक बार फिर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। एडवेंचर, कॉमेडी और पूरा का पूरा केओस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। इस बार रवि किशन का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है, जबकि अजय देवगन ट्रेलर के एंड में अपने आइकॉनिक स्टंट स्टाइल पर मजेदार सेल्फ जॉक करते हुए भी दिखाई देते हैं। धमाल 4 अगले महीने यानी 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और फ्रेंचाइजी के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट अपडेट। ग्लोबल पॉप सेंसेशन अरियाना ग्रांडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस को अपना म्यूजिक इस्तेमाल करने पर एतराज जताया है। अरियाना ने साफ कहा कि उनके गाने को किसी भी ऐसे कंटेंट के साथ यूज ना किया जाए जिससे वो सहमत नहीं रखते। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है और फैंस भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। तो फिलहाल बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया से इतने ही अपडेट्स। दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे मंच और आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। दोस्तों, चलिए फिल्मी गपशप में अब सुनते हैं एक और गीत, फिल्म भारत से चाशनी।

Attention listeners, the Department of Skill Development and Entrepreneurship, Government of Arunachal Pradesh, invites application from eligible candidates for admission to various trades offered at industrial training institutes, ITIs, across the state. Permanent residents of Arunachal Pradesh, as well as dependents of central government, state government and public sector, undertaking employees residing in the state may apply. Candidates must be at least 14 years of age and fulfill the eligibility criteria prescribed for their chosen trade. Admissions will be based strictly on merit, considering marks obtained in class 10 for matric trades and class 8 for matric trades. Interested candidates are required to submit their applications online through the department's official portal. Detailed information regarding available trades, eligibility criteria, fee structure, and admission procedures can be found in the admission brochure available on the department website. For further information, candidates may contact the nearest ITI or concerned officials of their respective institutes. Don't miss this opportunity to gain valuable technical skills and build a brighter future through vocational education. Dhyan dijiye priye shrotagano, Arunachal Pradesh Sarkar ke Department of Skill Development and Entrepreneurship dwara rajya ke vibhinn industrial ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी तथा राज्य में निवास करने वाले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के आश्रित इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और चुने गए ट्रेड के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगी। मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 10 के अंक और नॉन मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 8 के अंक को आधार माना जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार डिपार्टमेंट के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उपलब्ध ट्रेड्स, पात्रता, फीस और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी एडमिशन ब्रोशर में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम ITI या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। कौशल विकास के माध्यम से अपने भविष्य को मजबूत बनाने का ये सुंदर अवसर हाथ से न जाने दें। आज ही आवेदन करें।

0: दोस्तों फिल्मी गपशप में आज के लिए बस इतना ही। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। दोस्तों इस समाचार के बाद हम जुड़ेंगे रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की सातवीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. On the second leg of his visit, Mr. Modi will visit Slovakia. He will hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico and explore new avenues of cooperation. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Avignon, France, on 16th and 17th of this month. During the summit, he will exchange views with G7 leaders and those from invited partner countries and international organizations participating in the summit. On the final leg of the visit, the Prime Minister will visit Paris on 18 June for further bilateral engagements and to attend Europe's largest technology and startup event, VivaTech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The Prime Minister's presence at the G7 reflects India's standing as a leading voice of the Global South and a key partner in addressing global challenges. Finnish Foreign Minister Elina Valtonen defended India for buying Russian oil, explaining that India followed the rules of the Western price cap. Speaking at a meeting in Finland alongside Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, she explained that the price cap was created to keep global oil flowing while limiting Russia's profits, meaning India did exactly what was intended. Mr. Jaishankar strongly rejected European criticism by pointing out that Western sanctions forced Europe to buy up Middle Eastern supplies, leaving India to find other affordable options. He also criticized the United States for changing its rules, noting that Washington originally asked India to buy Russian oil to stabilize global markets before later putting tariffs on Indian imports. The Trump administration said it is prepared to accept civilian nuclear energy program in Iran as part of a broader nuclear agreement, provided Tehran dismantles the infrastructure that could enable it to build a nuclear weapon. The clarification came as a senior administration official outlined details of a proposed U.S.-Iran nuclear agreement yesterday that officials said could be signed within days. The official drew a clear distinction between civil nuclear power generation and nuclear weapons capability, arguing that Washington's objective is not to eliminate Iran's nuclear energy sector, but to prevent Tehran from retaining the capacity to produce a bomb. The passing out parade is being held today at the Indian Military Academy in Dehradun, the capital of Uttarakhand. President Draupadi Murmu is attending the occasion and has reviewed the parade. This year's passing out parade is historic, as for the first time, women cadets are passing out alongside gentlemen cadets from the academy. In this grand ceremony, more than 500 gentlemen and women cadets will take the antim pug towards becoming officers in the Indian Army. In badminton, India's PV Sindhu will face world champion Akane Yamaguchi of Japan in the women's singles semi-finals of the Australian Open in Sydney today. The third-seeded Indian booked her place in the last four with a commanding victory over Chen Su Yu in just 27 minutes in the quarter-finals. In FIFA World Cup, the United States defeated Paraguay by 4-1 in Group D opener at SoFi Stadium, Los Angeles. The U.S. team took an early advantage in the match when a sharp cross from Christian Pulisic bounced off Paraguay's Damian Bobadilla for an own goal. In the opening match of the 10th edition of the ICC Women's T20 World Cup, host England defeated Sri Lanka by 87 runs at Edgbaston in Birmingham. Put into bat first, England posted a massive 219-1 in their 20 overs, riding on Danny White-Hodges' unbeaten 105 runs. In reply, Sri Lanka were bowled out for 132 in 20 overs. Danny White-Hodges was named player of the match. The Indian women's team will begin its campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
4: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर. जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808. इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा.

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट रेडियो ऑन डिमांड का, जहां आपके मैसेजेस, आपकी फीलिंग्स और आपके गाने सब कुछ हवाओं में घुल जाता है। दोस्तों चलिए लेते हैं आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप हमें इस नंबर पर 9436887808 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी भी समय है, अभी आप जो मैसेज करेंगे उसे बिल्कुल लाइव हम लेंगे और उसे अभी के अभी प्ले करेंगे हमारे इस रोमांचक कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड का सिलसिला। अगर आप सुन रहे हैं अभी, आप बने हुए हैं हमारे साथ लाइव, तो जल्दी हमें मैसेज कीजिए। एक बार फिर आपको नंबर बता दूं, नंबर है 9436887808। तो चलिए लेते हैं आज दिन का पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट। आज का रिक्वेस्ट थोड़ा सा स्पेशल है और ऑनेस्टली बहुत ही प्यारा भी। एक तरफ से आया है एक मैसेज और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल सेम वाइब, सेम फीलिंग, बस फोन्स अलग पर कनेक्शन एक ही है। दोस्तों एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है और सरप्राइजिंगली वाइफ ने भी अपने हस्बैंड के लिए एक गाना भेजा। दोनों अलग अलग मैसेजेस पर दोनों में एक ही बात, म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे को फील करना। और दोस्तों यही तो खूबसूरती होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप की, जहां वर्ड्स कम पड़ जाते हैं और गाने सब कुछ कह देते हैं, जहां बिजी दिन के बीच भी एक छोटा सा सॉन्ग मैसेज

बन जाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ का फीलिंग। सच में ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो डिस्टेंस को भी क्लोज कर देता है। तो दोस्तों चलिए लेते हैं इनका बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रिक्वेस्ट। उन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग, आई एम झुमकर बागरा, हस्बैंड ऑफ योर रेगुलर लिसनर गुमे माई बागरा फ्रॉम हिगी बागरा। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म नगीना से तूने बेचैन इतना ज्यादा, जिसे गाया है अनुराधा पुडवाल और मोहम्मद अजीज ने। तो आशा करते हैं कि आप झुमकर बागरा जी और आपकी वाइफ दोनों बने हुए हैं लाइव हमारे साथ, क्योंकि हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट ले रहे हैं। और सही में बताएं, मुझे बहुत प्यारा लगा आप दोनों का रिलेशनशिप। आशा करती हूँ कि कभी नजर ना लगे किसी की और हमेशा ऐसे ही दोनों प्यार में रहे, ऐसे ही खुश रहे। चलिए दोस्तों लेते हैं झुमकर बागरा जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट।

दोस्तों चलिए अब सुनते हैं जुमकर बागरा जी के वाइफ के का सॉन्ग रिक्वेस्ट। उन्होंने हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है, लिखा है, गुड मॉर्निंग, आई एम गुमे माई बागरा फ्रॉम हिगी बागरा एंड अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू माई लविंग हस्बैंड जुमकर बागरा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत कैसे जीऊंगा मैं फिल्म साहिबा से, जिनके सिंगर से अनुराधा पुडवाल और जोली मुखर्जी। तो चलिए सुनते हैं ये डेडिकेटेड सॉन्ग फ्रॉम अ वेरी लविंग वाइफ टू हर वेरी लविंग हस्बैंड।

तो दोस्तों ये था सॉन्ग रिक्वेस्ट झुमकर बागरा और गुमे माई बागरा जी की तरफ से एक दूसरे के लिए प्रेम पत्र। चलिए दोस्तों अब रेडियो ऑन डिमांड में आगे बढ़ते हैं और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं आतुर क्रो जी का, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा फिल्म कयामत से कयामत तक से। तो उन्होंने ये सॉन्ग सुनने का, ये सॉन्ग वो सुनना चाहते हैं। आतर क्रो सार्लो एक्रो अक्लार तेरोन सार्चिन ग्रे तेरोन, अगर मैंने नाम लेने में गलती किया हो, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और वो सब सुन रहे हैं लंकांग सम डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग असम से। और आशा करते हैं आतर क्रोजी सार्लो क्रोजी आप हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, क्योंकि हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट ले रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनका बहुत ही प्यारा सा रिक्वेस्ट फिल्म कयामत से कयामत तक का पापा कहते हैं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

हर्ट्स के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर हम वही सब सॉन्ग्स प्ले करते हैं जो आपके दिल के है करीब। तो तुरंत अपना फोन उठाइए और हमें लिख दीजिए अपना डेडिकेटेड मैसेज, अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट, और हम फुलफिल करेंगे और हम बताएंगे आपके मैसेजेस को हमारे इस आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, नंबर है 9436887808। एक और बार सुन लीजिए, नंबर है 9436887808। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें जॉर्ज बारला जी की तरफ से। लिख रहे हैं, हाय गुड मॉर्निंग, आई एम जॉर्ज बारला एंड द सॉन्ग ही इज रिक्वेस्टिंग इज फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक दिल है कि मानता नहीं, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की जोड़ी ने। जॉर्ज बारला जी हमसे जुड़े हुए हैं बेदेती आसाम से। तो आशा करते हैं जॉर्ज जी कि आप लाइव हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं हमें। तो चलिए आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं और सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं।

दोस्तों चलिए तुरंत लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। आप सब हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे डेली लिसनर से, जिनका नाम है ज्योति सोरेन जी, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का ये गीत, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। और उन्होंने डेडिकेट किया है इस गीत को अपने फ्रेंड्स अनामिका भूमिज और प्रिया भूमिज को। ज्योति जी, आशा करते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम प्ले करने जा रहे हैं आपका रिक्वेस्टेड डेडिकेटेड सॉन्ग। चलिए सुनते हैं हसमत पगली प्यार हो जाएगा, ज्योति सुरीन जी का रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

दोस्तों चलिए अब सुनते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें मिला है एक बहुत ही बेहतरीन गीत का, जो फिलहाल मेरा भी फेवरेट है। मैं कई बार इस गीत को अकेले में सुनती हूँ। एंड ये गीत अभी बहुत ट्रेंडिंग भी है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हर जगह आप इस गीत को देख सकते हैं। चलिए लेते हैं इनका सॉन्ग रिक्वेस्ट। सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें असम गोहपुर से, लिख रहे हैं सानू प्रधान जी, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये गीत बैरन।

दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर अब लेते हैं अगला रिक्वेस्ट। हमें रिक्वेस्ट आया है असम बोरमजहान बागान से तुलसी तांती जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म तेरे नाम का कोई भी गीत। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो और चलिए सुनते हैं फिल्म तेरे नाम से तुमसे मिलना बातें करना।

दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर एक और आखिरी गीत ले लेते हैं। हमें रिक्वेस्ट आया है तेनसन क्रोची का रोसमेरी तेरोंपी सार्लो एक्रो, जो कि लिख रहे हैं लंकांग सम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म दिल मांगे मोर का गीत। दोस्तों जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म दिल मांगे मोर का गुस्ताख दिल, जिसे गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की जोड़ी ने। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इस रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में आज का ये आखिरी गीत।

दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम के अंत में और साथ ही पहुंच चुके हैं हमारे आज के पहले प्रसारण सभा यानी आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के अंत में। दोस्तों आशा करती हूं कि आपने मेरे साथ ये

सारण सभा एंजॉय किया। आप हमें बताइए, लिख भेजिए कैसा लगा आपको आज का ये प्रसारण। दोस्तों, अब हमारे अगली प्रसारण सभा में आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजे पूरा दुनिया। अब मुझे यानी आपकी आरजे बिंदु बिंदु मंच को दीजिए इजाजत। मैं आशा करती हूँ आपका दिन सुहाना हो और आप हमेशा सेहतमंद रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग एवं तकनीकी अभियंता ताना आतुम। साथ ही दोस्तों, एक और बात कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे मंच के साथ। उम्मीद करती हूँ आरजे मंच के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक और सुहाना रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी आरजे पूरा दुनिया। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा अजपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरूआत करते हैं। दोस्तों, दूसरी प्रसारण सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हर गीत एक जज्बा है, हर धुन एक एहसास है और हर बोल किसी कहानी का हिस्सा। तो चलिए बिना किसी देर के ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत आप सुन पाएंगे तमाशा फिल्म का सफरनामा, लकी अली की आवाज में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी सिनेमा के वो गीत जो कभी मुस्कान बन जाते हैं तो कभी यादों की धुन। हर धड़कन हर एहसास के लिए यहाँ कोई ना कोई गाना आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए एक ऐसे ही खूबसूरत गीत सुनते हैं। अगला गीत आप सुन पाएंगे चमेली फिल्म का भागे रे मन कहे सुनिधि चौहान की आवाज में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। यह आकाशवाणी टानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया।

0: With the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the first ODI of the three-match series at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this afternoon. The match is scheduled to start at 1:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. दस्तब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम यादों की बारात.

दोस्तों, जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू कभी कम नहीं होती। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल के किसी कोने में हमेशा बसी रहती है। बचपन की शरारतें, दोस्तों के साथ बिताए पल, पहला रेडियो, पहली साइकिल और वो गीत जो आज भी सुनते हैं, हमें सालों पहले की दुनिया में ले जाते हैं। आज का हमारा खास सेगमेंट है यादों की बारात, समर्पित हमारे प्यारे सीनियर सिटीजन्स के नाम। ये सिर्फ गानों का सफर नहीं बल्कि उन सुनहरे लम्हों का सफर है जहां जिंदगी थोड़ी धीमी थी, रिश्ते थोड़े गहरे थे और मुस्कुराहट दिल से निकलती थी। तो आइए कुछ देर के लिए आज के दौर की भाग दौड़ को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं उन हसीन सालों की तरफ, जब रेडियो के मधुर धुनों पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर गीत सुना करता था, जब हर गाना गाने के साथ जुड़ी होती थी एक कहानी, एक एहसास और एक अनमोल याद। तो चलिए यादों की इस खूबसूरत कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो शायद आपको भी आपकी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर ले जाएंगे। सुनते हैं अवतार फिल्म का दिन महीने साल गुजरते जाएंगे किशोर कुमार की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए सजाया गया ये खास कार्यक्रम यादों की बारात। ये खास कार्यक्रम है आप सबकी यादों के नाम सुकून के

नाम और उस खूबसूरत वक्त के नाम जो कभी पुराना नहीं होता। तो चलिए यादों की बारात कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, सरगम फिल्म से दफली वाले दफली बजा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही यादों की बारात कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ पुराने गाने और कुछ पुराने यादों के साथ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। आप बने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद हम लौटेंगे हमारे अगले कार्यक्रम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला में। तो आइए गीतमाला कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, वीर ज़ारा फिल्म का ऐसा देश है मेरा, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मन और प्रीता मजुमदार की आवाज में।

झंडस्ता बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों का ये खास कार्यक्रम गीतमाला। दोस्तों, देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात हमारे वीर जवान सिर्फ हमारी सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि हमें हिम्मत, कर्तव्य और देशभक्ति का असली मतलब भी सिखाते हैं। आज के गीतमाला सेगमेंट में बात करते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड फिल्मों के जिन्होंने देश प्रेम को अलग अलग नजरिए से दिखाया। और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। ये फिल्म हमें ब्रिटिश हुकूमत के दौर में ले जाती है, जहां एक छोटा सा गांव अपनी एकता और हौसले के दम पर अंग्रेजों को क्रिकेट के मैदान में चुनौती देता है। भुवन और उसकी टीम की कहानी ये बताती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो जीत मुमकिन है। हमारे जवानों की तरह फिल्म के किरदार भी हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ये फिल्म सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हिम्मत, टीम वर्क और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं लगान फिल्म का चले चलो, ए आर रहमान और श्रीनिवास की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की कुछ ऐसे फिल्मों की जिन्होंने देश प्रेम को अलग अलग नज़रिए से हमें दिखाया। अब जिक्र करते हैं स्वदेश फिल्म का। इस फिल्म में मोहन भागरावा नाम का एक सफल साइंटिस्ट विदेश से वापस अपने देश आता है और समझता है कि असली बदलाव बाहर से नहीं अपने लोगों के बीच रहकर लाया जा सकता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने में ही नहीं बल्कि अपने देश को बेहतर बनाने में भी है। कई दर्शक और फिल्म प्रेमी इसे एक बहुत ही रियलिस्टिक और दिल को छू लेने वाली पेट्रियोटिक फिल्म मानते हैं।

दोस्तों बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही जोश हाई हो जाता है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विकी कौशल स्टारर ये फिल्म 2016 की उरी अटैक के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन, प्लानिंग, टीमवर्क और देश के प्रति समर्पण को भी दिखाया गया है। इसका आइकॉनिक लाइन हाउस द जोश आज भी हर हिंदुस्तानी

0: दोस्तों इसी के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक एक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a six-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the eighth consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a two-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi says India's youth are marking their mark across various sectors, from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi emphasized that India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. He also lauded the youth for bringing immense glory to the nation in the field of sports and for contributing to various areas that will shape the future of India and the world. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic, as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said it is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
5: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a social media post, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker M.T. Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The Enforcement Directorate conducted searches at 7 premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. Iran has said it will not sign a final peace agreement with the United States to end the months-long conflict unless its key conditions are met, despite reports that both sides are close to reaching a preliminary deal. Speaking to Iran state broadcaster, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the text of a memorandum of understanding had been finalized and could be signed digitally in the coming days. And that is the end of this news bulletin.
0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनवाते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो चलिए एक ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सिलसिला फिल्म का देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। चलिए हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। प्रिंस फिल्म का बदन पे सितारे लपेटे हुए मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: पीजिए सरकार।
1: कहने थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों इसी के साथ ही हम शुरू कर चुके हैं हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पा रहे हैं न्यूयॉर्क फिल्म का है जुनू, के आवाज में।

दोस्तों, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप अपने स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं और एक अच्छे करियर की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये खबर

आप सबके लिए है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ईटानगर ने स्टेट के विभिन्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITIs में एडमिशन के लिए एप्लीकेंट्स इन्वाइट की है। रोइंग, ताबारिजो, दिरंग, बालिनोंग, यूपिया, मणिपोलियंग जीरो, वुमेन ITI सगाली, लुमला, कानुबारी और पंगेन में कई ट्रेड्स में ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट्स भी इस एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 10 और नॉन मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 8 में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस, अवेलेबल ट्रेड्स, एलिजिबिलिटी, फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी एडमिशन ब्रोचर में उपलब्ध की जाएगी। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन भराने में किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत आए तो MS सुमन शुक्ला से मोबाइल नंबर 9908680049990868004 या मिस्टर विवेक राठौरी से मोबाइल नंबर 9548223780 पर संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने ना दीजिए। अपने हुनर को नई पहचान दीजिए और समय पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूर सबमिट कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आइए अब हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं। मैं हूं ना फिल्म का चले जैसे हवाई, के और वसुंधरा दास की आवाज में।

दोस्तों के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार एवं मिड डे न्यूज। हम लौटेंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट ऑफ 90s के साथ।

0: बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर्स, लर्नर्स, कोरेजस, डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
7: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और

0: अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

जब म्यूजिक में मेलोडी थी, गानों में जज्बात थे और हर धुन दिल को छू जाती थी। 90s ने हमें बहुत सारे यादगार गाने दिए जिन्हें हम आज भी उतने ही शिद्दत से सुनते हैं, चाहे रोमांटिक मेलोडीज हो, दोस्ती के नगमे या डांस नंबर्स। 90s का हर गाना अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर लौट चलते हैं उसी सुनहरे दौर में और सुनते हैं 90s के कुछ बेहतरीन और सदाबहार गानों को। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट ऑफ 90s में। दोस्तों, हिट ऑफ 90s कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे सौदागर फिल्म से। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज में।

और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों, जब भी हम 90s के दौर की बात करते हैं, एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाती है और वो है शाहरुख खान। आज उन्हें हम किंग ऑफ रोमांस के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके करियर का एक और पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है दोस्तों उनका विलेन वाला अंदाज। 90s के शुरुआती सालों में जब अधिकतर नए एक्टर सीधे हीरो की इमेज बनाना चाहते थे, शाहरुख खान ने रिस्क लिया और ऐसे किरदार चुने जो डार्क, ऑब्सेसिव और नेगेटिव शेड से भरे हुए होते थे। चाहे बात हो बाजीगर के अजय शर्मा की, जो बदली की आग में किसी भी हद तक जा सकते थे, या फिर दर फिल्म का राहुल, जिसे आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार विलेन मोमेंट्स में से एक मानी जाती है। और फिर अंजाम फिल्म भी आई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने विजय अग्निहोत्री का किरदार निभाया था, एक ऐसा इंसान जो जुनून और ऑब्सेशन में इतना अंधा हो जाता है कि उसकी सोच खतरनाक रूप ले लेती है। ये रोल इतना पावरफुल था कि आज भी शाहरुख खान की सबसे बेहतरीन नेगेटिव परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जाती है। और खास बात ये थी कि शाहरुख खान ने इस नेगेटिव रोल्स को सिर्फ विलेन बनकर नहीं निभाया, बल्कि उन किरदारों की साइकोलॉजी को भी स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। उनके कैरेक्टर्स डराते भी थे, हैरान भी कर देते थे और कहीं न कहीं ऑडियंस को उनके बारे में सोचने पर मजबूर भी कर देते थे। इस वजह से उनकी ये परफॉर्मेंसेस आज भी याद की जाती है। और शायद इसी वजह से शाहरुख खान बाद में रोमांटिक हीरो बने तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और भी खास बन गई, क्योंकि दर्शक पहले ही देख चुके थे कि ये एक्टर सिर्फ प्यार का बादशाह ही नहीं, बल्कि हर तरह के किरदार को पूरी शिद्दत से जीने की कला भी रखता है। तो चलिए दोस्तों, शाहरुख खान के करियर की उन अनोखे दौर को याद करते हैं जब वो सिर्फ रोमांस का बादशाह नहीं, बल्कि अपने नेगेटिव और इंटेंस किरदारों से भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते थे। आइए दर, बाजीगर और अंजाम जैसे फिल्मों के कुछ यादगार गीतों का लुत्फ उठाते हैं और एक बार फिर याद करते हैं शाहरुख खान के वो दमदार विलेन वाला अंदाज जिसने 90s के सिनेमा को एक अलग ही पहचान दी।

इसी के साथ ही दोस्तों हिट ऑफ 90s कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3:00 आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्यक्रम आज के बॉलीवुड अपडेट के साथ। और दोस्तों वैसे तो हर साल कई फिल्में बॉलीवुड में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। और आज हम बात करें हैं एक ऐसे ही फिल्म की जिसका नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी जाग जाती है, वो है बंदर, जो रिलीज हुई थी 5 जून को। नाम सिंपल है लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन काफी हद के है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एक्लेम्ड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने, जो हमेशा अपने बोल्ड स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो एक ऐसी दुनिया लेकर आए हैं जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म की कहानी एक यंग मैन के आसपास घूमती है जो सिस्टम, सोसाइटी और अपनी पहचान के बीच उलझा हुआ है। बंदर सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक मेटाफोर है, एक ऐसी सोसाइटी का मेटाफोर जो कभी कभी बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाता है। फिल्म सोशल सटायर, डार्क ह्यूमर और इंटेंस ड्रामा का इंटरेस्टिंग मिक्स है। कहानी धीरे धीरे लेयर्स खोलती है और हर सीन के साथ ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। फिल्म में टैलेंटेड एक्टर्स की एक स्ट्रॉन्ग एसेबल कास्ट नजर आ रही है। हर कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और परफॉर्मेंस

को क्रिटिक्स ने काफी सराहा है। ये फिल्म एक टिपिकल पॉपकॉर्न एंटरटेनर नहीं है, ना ही यहाँ लार्जर देन लाइफ हीरो से और ना ही ओवर द टॉप एक्शन। इसकी स्ट्रेंथ है इसका रो रियलिज्म, पावरफुल डायलॉग्स और ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले। अनुराग कश्यप का सिग्नेचर स्टाइल हर प्रेम में दिखती है, डार्क, ग्रिटी और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक। और इस फिल्म की क्रिटिक्स ने राइटिंग और डायरेक्शन को काफी अप्रिशिएट किया है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर डिस्कशंस काफी गर्म है। कई व्यूवर्स इसे साल की सबसे थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स में से एक बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को इसका डार्क टोन और स्लो बर्न नैरेटिव थोड़ा चैलेंजिंग लगा। लेकिन एक बात पर सब सहमत नजर आ रहे हैं कि बंदर एक ऐसी फिल्म है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके दिमाग में काफी देर तक रहती है। फिल्म ने मल्टीप्लेक्स सर्किट्स और अर्बन सेंटर्स में अच्छी ओपनिंग ली। वर्ड ऑफ माउथ भी काफी स्ट्रांग रही, जिसकी वजह से कलेक्शन में स्टेबिलिटी देखने को मिली। ये उन फिल्मों में से है जो धीरे धीरे ऑडियंस बनाती है और डिस्कशन के दम पर लंबी रेस दौड़ती है। और दोस्तों, अगर आपको सोलफुल लव स्टोरीज पसंद है तो डायरेक्टर इम्तियाज अली एक बार फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ आ रही है मैं वापस आऊंगा लेकर। ये फिल्म कल यानी 12 जून को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शर्बरी, वेदांग रायना और नसरुद्दीन शाह नजर आएंगे। कहानी 1947 के पार्टीशन के बैकड्रॉप में सेट की गई है। एक इमोशनल लव स्टोरी है जहां प्यार, जुदाई और यकीन के साथ सफर करती है। फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है और टीजर के बाद से ही म्यूजिक लवर्स में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अर्ली स्क्रीनिंग्स के बाद इंडस्ट्री इंसाइडर्स ने फिल्म को इमोशनल और इम्पैक्टफुल बताया है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि यादों और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की भी बात करती है।

और दोस्तों अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया की वेव आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कॉकटेल 2 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं होमी अदरजानिया, जिन्होंने ओरिजिनल कॉकटेल भी डायरेक्ट की थी। इस बार लीड कास्ट में है शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना। ये ओरिजिनल फिल्म की डायरेक्ट सीक्वल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सक्सेसर बताई जा रही है। रोमांस, फ्रेंडशिप, हार्ट ब्रेक और मॉडर्न रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक स्टाइल अंदाज में दिखाया जाएगा। फिल्म को म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज दिया है और प्रमोशनल सॉन्ग्स पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी बज क्रिएट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस काफी एक्साइटेड नजर आ रही है और स्पेशली शाहिद, कृति, रश्मिका की पेयरिंग को लेकर डिस्कशंस काफी गर्म बनी हुई है। दोस्ती, प्यार, इमोशंस का नया कॉकटेल देखना अब ये होगा कि ये फिल्म ओरिजिनल कॉकटेल वाले मैजिक फिर से क्रिएट कर पाती है या नहीं।

तो दोस्तों, जून का महीना सिनेमा लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाली है। एक तरफ इम्तियाज अली की इमोशनल लव स्टोरी में वापस आऊंगा, दूसरी तरफ मिस्ट्री से घेरी गवर्नर और तीसरी तरफ ग्लैमर और रोमांस से भरपूर कॉकटेल 2। इनमें से दोस्तों, आप कौन से फिल्म देखना चाहते हैं, किस फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार है, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हे जवानी तो इश्क होना है फिल्म का टाइटल ट्रैक। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई ने।

दोस्तों इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वंचो श्रोताओं का समाचार।

0: दोस्तों हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे ईद मिशमी श्रोताओं का समाचार।
1: वंचो श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए पेश है ईद मिशमी कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जो होलोसो मानु लेनी एतने ची ईद मिशमी आ होला के जी दरगाह नंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ताहुनी के बने फ्रांस तो ने सलवा क्या मा मेलो ग्यावचा ओना बम बदा आओगा फ्रांस मा खिगने आतिकानी बगाचे ईदियाँ जाओगा वे आचुची पोआची जगा ऐ तो ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को आश्वासन करने प्राइम मिनिस्टर में भारत इनोवेट प्रोग्राम आई पहे बहुत ला होगा सलवा क्या मजे प्रेसिडेंट पेटरसन अलिन ग्रेनी तो ने प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको को चौगा पा नरेंद्र मोदी में ऐसा पूछे जहाँला हर मचने इबियन आतिको ने G7 समिट अखगा मा किंबे बहुत ला होगा आउटाची को प्रोग्राम अतिपाही एयांगो आजुआया कंदो ऐ तो ने इमो पॉपुलेशन चौका चातु गने PMGSY आयचे आज त्योमा इमो पॉपुलेशन लाताचिम ने अरुणाचल प्रदेश अरुजिना ने चीफ मिनिस्टर पेमा खंडु में बुनी मध्यले माची नीति आयोग में आयोता इंडिया अतिपाची चीफ मिनिस्टर अनुपची मीटिंग जी नगमा चिचाय बमहो लगभता आहोगा इन एजरगा ने कपड़ों यो माची नुलिबा अरुणाचल प्रदेश मा एजेंबर काफी मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आज ते हुए ऐ तो ने इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल दने तो ऑल इंडिया सर्विसेस कार्डरे हाथ ना आशिका जी ची पुआ नीति आयोग में अरुणाचल प्रदेश अरुजिना ने चीफ मिनिस्टर में लगाने हाँ तान दिया थी का बने जो ने प्राण चाहूंगे ने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NSC है जाचू प्राबा यहाँ जिना लगभदा होगा लिपचा हुलुनी नुमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में है तन्या इंडिया गवर्नमेंट में आयोम ब्रो इमु आरो तो ने एक डेवलपमेंट जो तांदो जो तेगा ने यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू में पुनी ईटानगर से BJP हेडक्वार्टर में ने पार्टी में ची इमु आनबो को ची जगह माहौल लगाने से ला नचिपू तो ने फ्रंटियर हाईवे आई छबु लाप पता आहुगा महा इनु मामलो के तारहू खानी मचनु चाइना दिया अंदोगा महो होतेला बोला लाजिमी तवांग मचे लेब्रांग अतिका मा खगाचे अतिको चिमु में पुलिस लाके पा पुलिस में आर्मी लाके तो गने इंडियन आर्मी में आ बम है बोयम बा हेगा बदा आहोगा आर्मी में अली एगने अतिका चिमु बुगा बचा है।

जिनस्ता आप शुरू करते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं आज प्रेम की गजब कहानी फिल्म से तू जाने ना आतिफ असलम की आवाज में।

ये शाम मस्तानी दोस्तों आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता HM भूषण। जाते जाते दोस्तों आपको बता दूं इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने RJ दंपक। तो दोस्तों अब मुझे यानी आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तमसा श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जा होती है दिल से दिल की बात। और श्रोताओं को बता दूं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:26 हो रहे हैं। इसके साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। इससे पहले दूसरी प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे तुनिया जी के साथ, और अब आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक ऐसे सफर में जहां होगी नॉन स्टॉप बेहतरीन कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे इस तीसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक गैर अर्थ तथा तकनीकी अभियंता पीबी त्योरी। दोस्तों अब चलिए तीसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए प्रस्तुत है स्पेशल प्रोग्राम इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे पर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हीमा हॉस्पिटल ईटानगर के कंसल्टेंट डर्मोकोलॉजिस्ट डॉक्टर टाकू काई शामिल है और इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है गैर अतर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज यानी 13 जून पूरे विश्व में इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, और इसी के हिस्सा के रूप में प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में आज हम जानेंगे अल्बिनिज्म रोग के बारे में। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ताकू कान्या, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हीमा हॉस्पिटल ईटानगर। मैडम, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू गैर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आकाशवाणी ईटानगर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं लोगों के बीच ये एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता पहुंचा सकूं। तो ये एल्बिनिज्म डे हर साल 13 जून को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ताकि लोगों तक, सोसाइटी तक और इवन जो एल्बिनिज्म से सफर करते हैं उनके लिए एक अवेयरनेस के तौर पर सभी को एल्बिनिज्म के बारे में जानकारी हो, ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनका अपेयरेंस को लेके, स्किन कलर को लेके। इसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है।
1: एल्बिनिज्म डिजीज किस तरह की ये बीमारी है मैम?
2: एल्बिनिज्म ये एक जेनेटिक कंडीशन है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि स्किन में हमारा बॉडी का जो कलर है वो एब्सेंट रहता है, जैसे स्किन कलर, हेयर कलर हो गया और आईज का कलर हो गया, वो बहुत लाइट रहता है या फिर एकदम लाइट ब्राउन और इवन सफेद भी रहता है।
1: मतलब पूरा स्किन जो सफेद हो जाता है
2: जी,
1: जो नॉर्मल सफेद है, ऐसे नहीं हो के अब नॉर्मली,
2: हाँ जो नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स है उनके कंपैरिजन में सफेद, एकदम सफेद ही हो जाता है। आईज का कलर, स्किन का कलर और इवन ये आईलैशेस का कलर भी सफेद हो जाता है।
1: और जो हमारे यहाँ पे जो हम सफेद दाग बोलते हैं उसी के सेम है?
2: नहीं नहीं, एक टोटली डिफरेंट कंडीशन है स्किन में जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं
1: जी।
2: तो अक्सर लोग विटिलिगो और एल्बिनिज्म को कन्फ्यूज करते हैं
1: जी जी।
2: ये सेम बीमारी नहीं है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जो इनहेरिटेड किया जाता है पेरेंट्स से, पेरेंट्स से बच्चों को लगता है। वेरस विटिलिगो जो है वो बर्थ से नहीं होता, वो लाइफ में बाद में आता है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जहाँ पे किसी वजह से हमारा जो बॉडी का सेल्स है वो खुद मेलानोसाइट्स को, जो हमारे बॉडी को कलर देते हैं, उन सेल्स को अटैक करने लगता है। तो इसके वजह से वो मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके वजह से ये विटिलिगो कॉज होता है। और विटिलिगो और एल्बिनिज्म का एक डिफरेंस ये है कि एल्बिनिज्म के तरह विटिलिगो में फुल बॉडी में कलर वाइट नहीं होता, वो पैची रहता है। कुछ कुछ एरियाज में नॉर्मल स्किन भी रहता है। तो ये है मेजर एक डिफरेंस।
1: हाँ, जैसे कि विटिलिगो में एक जगह में पैच होके फिर वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब वो अगर मान लीजिए पूरा हो गया तो हम उसको एल्बिनिज्म कह सकते हैं?
2: नहीं नहीं, वो एल्बिनिज्म नहीं, उसको हम एल्बिनिज्म नहीं कहेंगे क्योंकि विटिलिगो में जो है वो यूजुअली आईज और हेयर को नहीं अफेक्ट करता।
1: अच्छा।
2: वेरस स्किन का जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग, कलर प्रोड्यूसिंग का जो सेल्स रहता है उसको वो विटिलिगो में अफेक्टेड रहता है। और एल्बिनिज्म में जो है वो तो पूरा बॉडी का, फुल बॉडी का, ओनली नॉट ओनली स्किन, वो पिगमेंट जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा बॉडी को कलर देता है, वो जीन में ही डिफेक्टेड रहता है, तो वो बनता ही नहीं है. इसीलिए एल्बिनिज्म में स्किन को लेके एंड इवन हेयर, आईज और आईलैशेस सभी में कलर फेड हो जाता है, मतलब कलर ऑलमोस्ट नील ही रहता है.
1: हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि एल्बिनिज्म जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये अपने पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हैं, और भी दूसरा कारण हो सकता है इसके?
2: नहीं, ये जेनेटिक कंडीशन ही है जो पेरेंट्स के डिफेक्टेड जीन जो है वो ट्रांसफर होके बच्चों में होता है, तो इसका कोई अलग कॉज नहीं है. ये इन्फेक्शन की तरह नहीं है, कोई दर्द से नहीं होता है, लाइफस्टाइल से नहीं होता है, खाना पीना से नहीं होता है, बस ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है. वो जो जीन जो रेस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी को कलर देने के लिए, वो जीन जो डिफेक्टेड रहता है उसके वजह से कलर ही प्रोड्यूस नहीं होता. इसलिए इसका तो कॉज तो जेनेटिक ही है,
1: और ये एक दूसरे में फैलता नहीं है.
2: नहीं नहीं, ये फैलता नहीं है, ये आप साथ उनका साथ रहने से या फिर उनको छुआछुई से नहीं फैलता है.
1: क्या ये क्योरेबल है एल्बिनिज्म?
2: एल्बिनिज्म का क्योर, सिंस ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, बर्थ से डिफेक्टेड रह,

0: है ना जी, तो इस वजह से इसका क्योर अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है।
1: तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या किस तरह के कुछ ट्रीटमेंट है क्या
0: अभी? हाँ, एज ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि जो बॉडी फुल बॉडी में जो मेलानिन का फंक्शन है उसको वापस से रिस्टोर कर सके, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है। मे बी इन फ्यूचर जीन थेरेपी वगैरह आ जाए, पर एज ऑफ नाउ हम लोग वो कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं।
1: जैसे कि
0: जैसे फॉर स्किन, स्किन में बोला जाए तो इसका तो पिगमेंट ही एब्सेंट रहता है ना, तो हमारा बॉडी में नॉर्मली क्या होता है कि मेलानिन जो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा बॉडी को सनलाइट से भी प्रोटेक्शन देता है। सन का जो हार्मफुल रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, उससे प्रोटेक्शन देता है। तो सिंस एल्बिनिज्म में ये जो मेलानिन है वो एब्सेंट रहता है, रहता ही नहीं है, तो इनका जो सन डैमेज होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग, जिन लोग को एल्बिनिज्म है वो लोग प्रॉपर सन प्रोटेक्शन ना, बहुत रेगुलरली सन प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि बाहर जाए तो फिजिकल प्रोटेक्शन, जैसे फुल स्लीव कपड़ा पहन लिया, अम्ब्रेला पकड़ के बाहर जाना है, हैट्स पहनना है, मास्क से कवर करना है, और बहुत डिलीजेंटली सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि उनको ये सन डैमेज के वजह से स्किन कैंसर होने का चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो उनको सनस्क्रीन भी रेगुलरली लगाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनको पीक आवर्स में सनलाइट एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए, जैसे पीक आवर्स बोला जाए तो उनको ये जिस टाइम में सबसे हार्श रहते हैं धूप ना, तो यूजुअली वो टाइमिंग जो 12 PM to 2 PM रहते हैं, तो उस आवर्स में सन एक्सपोजर थोड़ा कम करे तो बेहतर है उनके लिए।
1: अच्छा, कोई भी सनस्क्रीन ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं या कि आप को पर्टिकुलर किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके या उनके
0: मेडिकेटेड जो सनस्क्रीन यूजुअली अवेलेबल रहता है उसमें एडिक्वेट SPF रहता है। सनस्क्रीन्स में SPF मेंशन किया जाता है, जो SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर ना, तो ये यूजुअली अबव 50 के ऊपर हो तो अच्छा है। तो मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स जो फार्मेसीज में अवेलेबल है यूजुअली वो 50 SPF के ऊपर अवेलेबल रहता है, लेकिन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है कुछ कुछ में शायद वो SPF कम रहता है, तो उस वजह से प्रॉपर मेडिकेटेड सनस्क्रीन स्पेशली एल्बिनिज्म पेशेंट्स के लिए तो प्रॉपर SPF वाला सनस्क्रीन यूज करने से उनके लिए बेहतर है,
1: ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एल्बिनिज्म का कोई अभी तक कोई खास क्योर नहीं है, इलाज उतना संभव नहीं है, तो हमें थोड़ा कुछ चीजें ज्यादा अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा अपने स्किन को लेके, अपने जो हेयर है, अपना बॉडी को लेके। तो ऐसे में हम कैसे समझे कि हमें एल्बिनिज्म हो रहा है, किस तरह से जाने, क्या कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम्स है कि जिससे कि हम सतर्क रह सके?
0: एल्बिनिज्म एक बर्थ डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो बर्थ से रहता है, तो जन्म से उनका स्किन सफेद ही रहता है, स्किन हेयर या आईज का कलर जो है वो लाइटर साइड में रहता है, तो अपीयरेंस वाइज बोले तो बर्थ से समझ में आ जाता है कि ये कलर तो डिफरेंट है करके ना, तो एज सच इसका अर्ली सिम्टम करके तो नहीं रहता, लेकिन एज ये प्रोग्रेस करेगा ना कलर का एब्सेंस होने का वजह से, तो फ्यूचर में जाके एज वो सन एक्सपोजर करते रहेगा तो उनको सन डैमेज का, जैसे मैंने बोला सन डैमेज का चांसेस ज्यादा रहता है, तो फ्यूचर में स्किन कैंसर डेवलप करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और स्किन को छोड़ के इनका आईज का भी प्रॉब्लम रहता है।
1: अच्छा,
0: आईज में आई साइट कमजोर रहता है, विजन पुअर रहता है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा आईज का जो डार्क वाला पोर्शन है, जो आई बॉल बोलते हैं ना, डार्क वाला पोर्शन है सेंटर में, वो आयरिस है, तो ये आयरिस में भी कलर रहता है, पिगमेंट रहता है, जो मेलानिन है, मेलानिन रहता है नॉर्मली, लेकिन एल्बिनिज्म में मेलानिन कम होने की वजह से, सिंस इनका आंखों का कलर भी लाइट रहता है, लाइट ग्रे या फिर लाइट ब्राउन ऐसा रहता है,
1: तो जन्म में ही पता चल जाएगा।
0: हाँ, जन्म में पता चल जाएगा, तो सिंस आंखों का कमजोरी भी उसी की वजह से आता है, जो क्योंकि ये पिगमेंट जो है हमारा आयरिस जो है वो हमारा लाइट आंखों में जो लाइट जाता है उसको रेगुलेट करता है, तो उसको कंट्रोल करता है, तो इस वजह से उसका कमी के वजह से उनका जो एल्बिनिज्म वाला पेशेंट्स है उनका आंखों का लाइट से सेंसिटिविटी भी ज्यादा रहता है।

0: स्किन का पिगमेंट एंड आईज में रहता है, बट यूजुअली हम लोग जो एल्बिनिज्म कुछ अलग बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, एज सच एल्बिनिज्म के वजह से कोई और प्रॉब्लम तो खास नहीं होता,
1: नहीं होता।
0: लेकिन मेडिकल टर्म में हम लोग सिंड्रोम्स बोलते हैं, दो दो चार बीमारी साथ में आ जाते हैं, उस तरह के एक एग्जांपल है चेडियक हिगाशी सिंड्रोम ना, उसमें एल्बिनिज्म के साथ कोई और कंडीशन भी हो जाते हैं, लाइक ब्लीडिंग प्रॉब्लम या फिर लंग्स का इश्यू होता है, पर ये कॉमनली नहीं होता, ये बहुत ज्यादा ही रेयर है, कुछ बाकी बीमारी के साथ कभी कभी एसोसिएटेड होता है फिर, लेकिन ओनली एल्बिनिज्म में कोई अदर हेल्थ इश्यूज तो
1: नहीं,
0: नहीं होता है।
1: और पेरेंट्स को है तो बच्चा को होना ही है, ऐसे भी नहीं है।
0: हाँ नहीं, ये इनहेरिटेड कंडीशन है जैसे मैंने बोला, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को एल्बिनिज्म है तो उनका बच्चा को जो श्योरली एल्बिनिज्म होगा ही है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 100% ये ट्रांसमिट नहीं होता है। जैसे इसको हम लोग मेडिकल में ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, जैसे किसी को एल्बिनिज्म है तो उनका पूरा 100% जीन नहीं जाता है, दोनों पेरेंट्स से अगर उनको डिफेक्टेड जीन मिला तब जाके पॉसिबल है कि चिल्ड्रेन को होगा।
1: अच्छा, ये एल्बिनिज्म जो सही बताओ तो मेरे लिए बहुत नया है, तो कितना कॉमन है अगर हम अपने अरुणाचल प्रदेश की बात करें, और आप एक डर्माटोलॉजिस्ट है, कितने केसेस देखे हैं अरुणाचल प्रदेश में आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से?
0: एल्बिनिज्म पूरा वर्ल्ड में ही एक्चुअली रेयर डिजीजेस में आता है,
1: जी
0: इवन इन इंडिया स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अराउंड 20,000 पॉपुलेशन में एक केस मिलता है, ऐसे रहता है। एंड हमारा अरुणाचल में एज सच कोई पब्लिश डेटा नहीं है एल्बिनिज्म के रिगार्डिंग, और
1: हाँ
0: सिंस ये जैसे बाकी इन्फेक्शियस डिजीजेस की तरह स्टेट का हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में रेगुलरली रूटीनली ट्रैक भी नहीं किया जाता है क्योंकि
1: हाँ
0: रेयर है ना, इसलिए कोई ऐसे ऑथेंटिक पब्लिश डेटा नहीं है।
1: हाँ
0: तो एंड मेरा एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने कोई एल्बिनिज्म का केस नहीं देखा अरुणाचल में।
1: जैसे कि हम इंसान जो ऐसे होते हैं, हम ज्यादातर लोगों की जो अपीयरेंस है उसी से लोगों को हम जज करते हैं जनरली, तो जैसे हमने यहाँ पे विटिलिगो के केसेस देखे हैं, अक्सर हम कई लोग उन लोगों से थोड़ा डर भी जाते हैं देख के उनका, क्योंकि उनका अपीयरेंस थोड़ा अलग, अगर जब स्पेशली फेस में होता है तो हम डर जाते हैं, तो जैसे एल्बिनिज्म के केस में भी इस तरह से भी उनका भी अपीयरेंस, वो तो सबसे अलग होंगे, बहुत
0: जी
1: ज्यादा सफेद, तो ऐसे में जो सोशल स्टिग्मा है, लोग भेदभाव करते हैं, तो वो तो रहेंगे ही, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे हमारे जो सोशल जो स्टिग्मा है उस वजह से हमारे जो एल्बिनिज्म का जो पेशेंट है उन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है?
0: स्टिग्मा, एल्बिनिज्म में स्टिग्मा आई थिंक प्राइमरीली बिकॉज वही आपने जैसे बोला उनका अपीयरेंस के वजह से है, वो हमारे से थोड़ा डिफरेंट दिखता है कलर में, तो मेन तो उनका कॉमन इश्यूज ये रहता है कि वो कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाए तो लोग उनको स्टेयर करते हैं, घूर के देखते हैं, मे भी कोई कोई लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मे भी, पर ये चीज उनके लिए एक अनवांटेड अटेंशन टाइप ऑफ होता है, तो ये उनके लिए सेल्फ एस्टीम को, जो लोग एल्बिनिज्म से जी रहे हैं उनके लिए उनका सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा इवन उनका जो पोअर विजन है चिल्ड्रन चिल्ड्रन में, तो उनको कभी कभी उनको खुद पता नहीं होगा कि एल्बिनिज्म के वजह से उनका ये विजन में जो
1: विजन
0: तकलीफ है, तो ये पुअर विजन के वजह से उनका स्कूल में परफॉर्मेंसेस कभी कभी थोड़ा डाउन साइड में रह सकता है, बट उनका एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में कोई वो नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल्स के तरह होता है, तो इस वजह से उनका वो थोड़ा टीजिंग एंड बुलिंग का शिकार बन सकते हैं उन लोग, तो इस वजह से उनका मेंटल हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है।
1: तो इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं?
0: इसका जो है इसीलिए ये वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज इम्पोर्टेंट ना, ताकि हम लोग सोसाइटी के बीच में इवन एल्बिनिज्म वाले केसेस के बीच में उनके अमोंगस्ट में जागरूकता और अवेयरनेस पहुंचा
1: हाँ,
0: सके।
1: लोग अवेयर नहीं है इसलिए डर जाते हैं,
0: हाँ
1: कहीं मुझे भी लग ना जाए ये सोचते हैं, अगर हम अवेयर रहेंगे तो शायद हम एक जैसे उसको भी ट्रीट करना शुरू कर देंगे, तो
0: हाँ
1: जैसे कि अभी जब

0: नेस की बात करते हैं तो एक जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, वैसे अभी आप तो बता रही है कि हमारे यहाँ पे एल्बिनिज्म का कोई केसेस तो नहीं है, फिर भी इसमें हॉस्पिटल्स या फिर आप लोगों के डॉक्टर्स के बीच में ऐसा कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो इसके अवेयरनेस के लिए आप लोग, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह?
1: ऐसे तो हाँ, जैसे अभी ये हम लोग एल्बिनिज्म डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरह विटिलिगो का भी एक डे है,
0: अच्छा,
1: तो उसमें हम लोग पेशेंट्स को कभी कभी स्टूडेंट्स के अमोंग मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के अमोंगस्ट जाके ये एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व करता है, जहाँ पे सबको वेल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि इसका कोर्स के बारे में, जैसे ये कंटेजियस नहीं है,
0: हाँ,
1: टच से नहीं फैलता है, ये सब और कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस। एक तो ये मेन तो वो कंटेजियस जो लोग सोचते हैं कि टच करने से या फिर साथ में रहने से फैलता है, ये सब अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन पर्टिकुलर डे भी हम लोग देखते हैं।
0: तो अवेयरनेस सबसे जरूरी है। तो
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने और स्लोवाकिया के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और अतिरिक्त सहायता की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अवधि में अरुणाचल प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारतीय सेना द्वारा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय का माना जा रहा एक बिना विस्फोटित मोर्टार सेल सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया है। भारत ने खारिक क्षेत्र में तेल के जहाज पर अमेरिकी नौसेना के हमले, जिसमें मारे गए 3 भारतीय नाविकों को लेकर अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान का दुर्घटनाग्रस्त। और पुरुषों के क्रिकेट में धर्मशाला में बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों की यात्रा पर फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले दिए बयान में श्री मोदी ने कहा है कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस को खास स्थान है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय के लोगों, स्टार्टअप संस्थापकों और बिजनेस लीडर्स ने इस यात्रा को लेकर उत्साह जताया। हमारे संवाददाता के अनुसार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की गई है और प्रवासी भारतीय उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अहम क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वहां के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। स्लोवाकिया की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री मोदी ब्रात्सिलावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और अतिरिक्त सहायता की मांग की है। राज्य के सामरिक महत्व एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जनसंख्या आधारित वित्तीय सहायता मानदंडों की समीक्षा करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का विस्तार कर 250 या उससे अधिक वाली आबादी वाले गांवों में इसमें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक राज्य के 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल को सशक्त बनाने और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग कैडर बनाने की भी मांग की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद NEC को क्षेत्र के नीति निर्माण थिंक टैंक के रूप में अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव भी रखा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस अवधि में अरुणाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे, संपर्क व्यवस्था, जल कल्याण, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ईटानगर स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण सड़कों, रेलवे विद्युतीकरण, विमानन, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वित्तीय समावेशन तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन में हुई प्रगति का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, नेचीफू सुरंग और फ्रंटियर हाईवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं को भी रेखांकित किया। भारतीय सेना द्वारा 1962 के भारत चीन युद्ध के समय का माना जा रहा एक बिना विस्फोटित मॉर्टल सेल सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। यह शेल गत 11 जून 2026 को तवांग के लेब्रांग क्षेत्र में पाया गया था। तवांग पुलिस को सूचना मिलने के बाद इलाके को घेर लिया गया और सेना के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया गया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने मॉर्टल शेल को मेंथांग में जाकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। इस कार्रवाई में किसी की प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। तवांग पुलिस अधीक्षक तासी दारांग ने सेना की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी बिना फटे सैन्य गोला बारूद दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दिए जाए। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 198वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
6: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस, डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
5: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया।
7: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड

दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत गैंगस्टर फिल्म से। गीत के बोल है लम्हा और इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश है और एक खास गीत फ्रॉम द फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार। और गीत के बोल है बुरे बुरे बादल और इस गीत को आवाज दी है संदेश संदलिया खुनाल गंजावाला और श्रेया कौशल ने। दोस्तों, एक प्यारी सी रोमांटिक फिल्म है जिसमें तुषार कपूर और अमृता राव की जोड़ी दिखाई गई है। फिल्म का मैसेज है कि इंसान को अपने सपनों और टैलेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। शाहिल तुषार कपूर एक आर्टिस्ट है जबकि रितु अमृता राव बिजनेस और कॉरपोरेट दुनिया से जुड़ी हुई लड़की है। फिल्म में प्यार, फैमिली वैल्यूज और करियर के बीच का बैलेंस दिखाया गया है। अमृता राव की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस इस फिल्म की सबसे पसंद की जाने वाली बातों में से एक है। फिल्म के गाने भी

खास सॉफ्ट और रोमांटिक है जो कहानी के मूड को और सुंदर बना देती है। दोस्तों इस फिल्म में एक डायलॉग जैसा एहसास देती है, कुछ कास्ट लाइंस जो हमें भी याद रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अगर टैलेंट और मेहनत सच्ची हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं।

हेलो सो कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में अब आप सुन रहे हैं गीत दे दनादन फिल्म से, और इस गीत का आवाज दी है सुरजन जी मेलो और राहत फतेह अली खान ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही इवनिंग ड्राइव का ये अंक यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप जुड़ेंगे मेरे साथ कार्यक्रम शाम की महफिल में।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत सलमान खान की नई फिल्म मातृभूमि से। गीत के बोल है चांद देख लेना और इस गीत को आवाज दी है अंकुना मुखर्जी, हिमेश रेशमिया और निहाल थोरानी।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे गीत मोहित चौहान की आवाज में फिल्म दिल्ली सिक्स से। आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम शाम की महफिल में। हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम शाम की महफिल में। और चलिए शाम को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ प्यारी सी शायरी आपके लिए। शाम ढलती है तो यादों का समा होता है, हर रंग में किसी अपने का चेहरा बसा होता है। सूरज की किरणें जब आराम करने लगती है तब शाम अपनी खूबसूरती बिखरने लगती है। शाम आई है फुर्सत का पैगाम लेकर, खुशियों के कुछ लम्हे और सुकून का नाम लेकर। हर शाम कुछ नया एहसास दे जाती है, दिन की थकान को प्यारी सी मुस्कान दे जाती है। खुशनुमा हो ये शाम, महकती रहे फिजा, दिल में बसी रहे उम्मीद और चेहरे पर रहे हंसी सदा। शाम की ठंडी हवाओं से एक पैगाम आया है, मुस्कुराते रहो जिंदगी फिर एक खूबसूरत फिर फल लाया है। दोस्तों इसी के साथ ही अब कार्यक्रम शाम की महफिल में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत लैला मजनू फिल्म से।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत डियर जिंदगी फिल्म से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। तो चलिए, शाम की महफिल में अब आपके लिए पेश है गीत कल हो ना हो फिल्म से। ये के बोल है कुछ तो हुआ है और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक, शान और शंकर एहसान लोई ने। दोस्तों, ये फिल्म कल हो ना हो बॉलीवुड की सबसे यादगार इमोशनल रोमांटिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म की कुछ खास बातें, इसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है। अमन शाहरुख खान का किरदार लोगों के दिल को छू लेता है क्योंकि वो अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशियों के लिए जीता है। फिल्म का मैसेज है जिंदगी का हर पल जी भर कर जियो क्योंकि कल हो ना हो। इसमें कॉमेडी, रोमांस और इमोशन का बहुत अच्छा बैलेंस है। दोस्तों, फिल्म फैमिली रिलेशनशिप, दोस्ती और सेक्रीफाइस की अहमियत को बहुत प्यारे तरीके से दिखाती है। अमन का पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना और दूसरों को खुशी रखना कितना जरूरी है। फिल्म की एक यादगार लाइन, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। इसी वजह से ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि जिंदगी को अप्रिशिएट करने का एक खूबसूरत पैगाम भी है।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत नीरज श्रीदान की आवाज में फिल्म तुम मेरे से। आपको बता दो कि इसके साथ ही शाम की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप जुड़ेंगे मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। दोस्तों कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत जन्नत फिल्म से। गीत के बोल है तेरा दीदार हुआ और इस गीत को आवाज दी है अनुपम अमोद, प्रीतम चक्रवर्ती और राहत फतेह अली खान ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत जन्नत फिल्म से और कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। अब आपके लिए पेश है गीत ब्रह्मास्त्र फिल्म से। गीत के बोल है केसरिया और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है. आप सुन रहे थे गीत सावरे एफएम से और अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में गीत आई हैड लव स्टोरीज फिल्म से. गीत के बोल है बिन तेरे और इस गीत का आवाज दी है साबकत अमानत अली, सुनिधि चौहान और विशाल शेखर ने.

दोस्तों आपको बता दूं कि इसी गीत के साथ ही हिंदुस्तान में गानों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आदेश श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और मैं हूं आपके आरजे साथी दांपा। अब चलिए श्रोताओं, आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

दोस्तों आज के कलाकार कार्यक्रम में मैं बात कर रही हूँ अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत भारत के सिनेमा जगत दशक में राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनके काबिलियत के वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का जिसको हर कोई ना जानता था न कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। दोस्तों शाहरुख खान 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक वे 15 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। शाहरुख खान दिलीप कुमार के साथ सबसे ज्यादा बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड साझा करते हैं। अब चलिए दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म जॉस से गीत। गीत के बोल है मेरे ख्यालों की मलिका और इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने। इस गीत के बाद हम फिर बातें करेंगे फिल्मी दुनिया से जुड़ी और किंग खान के बारे में।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब चलिए कार्यक्रम में हम और आगे जानते हैं बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान की। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कैसे एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों दिल पर राज कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मिर्ताज मोहम्मद और उनकी मां का नाम लतीफ फतिमा है। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए की मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट में चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड सोर ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में एक दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी उनके अंदर परेशानियों से लड़ने की जज्बा कभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए बैरी जॉन के अंतर्गत एक्टिंग सीखी और इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर भी एडमिशन ले लिया, जहां वो एक्टिंग के गुण सीखने लगे। शाहरुख खान उनका पहला रोल था दिल दरिया सीरीज में और इसी बीच फौजी नाम की एक सीरियल में काम कर लिया था और टीवी सीरीज सर्कस वगले की दुनिया उम्मीद में काम किया। और उस समय तक जिस तरीके से शाहरुख खान ने एक्टिंग की थी, उनकी तुलना लोगों ने लीजेंडरी दिलीप कुमार से करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, शाहरुख खान की एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्म में काम मिल गए। सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आसना है नाम के फिल्म में साइन किया गया। लेकिन 1992 में रिलीज हुई दीवाना फिल्म शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के करियर को एक अच्छा स्टार्ट दिया और उनके कई फिल्म भी आए। दोस्तों, कार्यक्रम में हम और आगे बातें करेंगे किंग खान की अब चलिए, लेकिन उससे पहले आपके लिए पेश कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में हम बातें कर रहे थे एसआर के केशेहा शाहरुख खान की। दोस्तों, 1993 में शाहरुख खान ने अपने लीड से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी दो फिल्म दर और बाजीगर आई, जिसमें वो हीरो के जगह विलन के रूप में भूमिका निभाते नजर आए और लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। और इसी तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ दो साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में लोहा मनवाया और फिर आगे भी शाहरुख खान कई सारे फिल्मों में नजर आए और वो हर चैलेंजिंग रोल निभाते हुए लोगों के बीच फेमस हो रहे थे। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई 1995 में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी और यही वो मूवी थी जिसके बाद से लोगों ने एसआरके को रोमांटिक चाबी बना दिया और इसके बाद भी एसआरके ने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई मोहब्बतें, कभी कभी कभी खुशी कभी गम, देवदास, स्वदेश, वीर जरा, पहली, दोन, चक दे इंडिया, माइनस खान, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग को लोहा मनवाया। शाहरुख खान एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज के कलाकार की ये अंक यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा है हमारे कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आए होंगे। जाते जाते आपके लिए छोड़े जा रहे हैं ये गीत फिल्म राम जाने से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अब पेश है आपके लिए कार्यक्रम माई स्टेट माई प्राइड, यानी इस सेगमेंट में हम बातें करेंगे अपने प्रदेश की। दोस्तों चलिए अरुणाचल प्रदेश द लैंड ऑफ राइजिंग सन की कुछ खास बातें। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश द लैंड ऑफ राइजिंग सन की कुछ खास बातें हैं। भारत में सूरज की पहली किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में पड़ती है, इसलिए इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। हमारा राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों के लिए मशहूर है। यहाँ 20 से अधिक मुख्य जनजातियां और कई सब ट्राइब्स रहती हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं और परंपराएं हैं। तवांग मॉनेस्ट्री भारत के सबसे बड़े और दुनिया के प्रसिद्ध बुद्ध मठों में से एक है। नमदपा नेशनल पार्क बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों कार्यक्रम में हम आगे और बात करेंगे अपने प्रदेश की, लेकिन उससे पहले पेश कर रहे हैं आपके लिए फिल्मी गाने, और फिल्मी गानों में आपके लिए पेश है गीत खिलाड़ी फिल्म से। गीत के बोल है क्या खबर थी जाना, और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और आशा भोसले ने।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में, और आपको बता दूं कि आपने फिल्मी गाने तो बहुत सुने। अब मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूं परेश पहुजा की आवाज में गीत दूर और दूर, और आपको बता दूं कि ये गीत फिल्म की नहीं, एक एल्बम की गीत है।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत मानवनों की आवाज में। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और मैं हूं आपके आज साथी दांपक। अब चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को और आगे ले चलते हुए पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। गीत के बोल है तू जाने ना, और इस गीत को गाया है अतीब असलम ने।

दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग से ही पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे वीकली स्पॉट राउंड अप।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है और इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में 9:01 हो रहे हैं। इसके साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बोले विश्व गीत। जी हाँ, और इस सेगमेंट पर मैं आपको ले चलूंगी पुराने गानों की सफर में। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से। गीत के बोल है प्यार कभी कम नहीं करना और इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और बब्बी लहरे ने। दोस्तों, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की जोड़ी नजर आती है, जिसे उस दौर के दर्शकों ने काफी पसंद किया था। कहानी राजा नाम के एक कठोर और भटके हुए इंसान की है, जो प्यार और अच्छे संस्कारों की वजह से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। फिल्म का सबसे सुंदर संदेश यह है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बना सकता है। माधुरी दीक्षित का लक्ष्मी वाला किरदार राजा की जिंदगी में रोशनी लेकर आती है और उसे बुरे आदतों से दूर करता है। फिल्म का संगीत बब्बी लहरी ने दिया था। गाना प्यार कभी कम नहीं करना आज भी काफी याद किया जाता है। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी मिली थी। एक एहसास जो ये फिल्म देती है, जब किसी को सच्चे प्यार मिलता है तो उसकी जिंदगी की राह बदल सकती है। जी हाँ, इसी के साथ कार्यक्रम बोले विश्व गीत में पेश कर रहे हैं पहला गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब पेश है आपके लिए गीत हनीमून फिल्म से। गीत के बोल है आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल, और इस गीत को आवाज दी है अमित कुमार और अनुराधा पाठवाल ने।

दोस्त आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और अब आपके लिए गीत पेश कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में गीत रुक जाना नहीं। दोस्तों ये गीत हिंदी फिल्म संगीत के सबसे प्रेरणादायक गानों में से एक माना जाता है। ये गाना फिल्म इम्तिहान का है। इसे महान गायक किशोर कुमार ने अपने दिल को छू लेने वाली आवाज में गाया था। गाने के बोल मशहूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। इसका संदेश बहुत गहरा है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हिम्मत मत हारो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। आज भी जब लोग निराश या परेशान होते हैं तो ये गाना उन्हें हौसला देता है। किशोर कुमार की आवाज में दर्द, उम्मीद और हिम्मत का अनोखा संगम सुनाई देता है। गाने की सबसे यादगार पंक्ति का एहसास है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। ये गाना हमें सिखाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के सामने रुकते नहीं। इसी वजह से रुक जाना नहीं सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पॉजिटिव नजरिया बन गया है। तो पेश कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिशरे की यहीं पर समाप्त होते हैं और इसी के साथ ही आज की तीसरी प्रसारण सभा की समाप्ति यहीं पर होती है। उम्मीद करती हूँ इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल के प्रातःकालीन सभा में। दोस्तों, इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत तथा तकनीकी अभियंता पीबी द्योरी। तो मुझे यानी अपना आज ये साथी दंपा कोलंबू को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।
1: संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
2: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में

0: प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5,000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की, तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अविज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी।

0: तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
0: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको एक मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी, जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म, मजहब, जाति,

0: कदम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना

0: चुन रहे होते हैं, एक तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहां पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
1: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
1: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे ₹500 एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटेलिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
2: जी? हैं,
0: रादर देन योर ओन कंपोजिशन?
2: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव डेट।
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया,
1: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज वॉट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

0: कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: आई वुड से इट इज अ सिविलाइजेशनल मेमोरी जस्ट लाइक महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayan itself. Ramayan ka jo spandan hai, jo lay hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hain. Aur maine do line likhi thi Kaikeyi ka prasang, ki Kaikeyi ke karan Ram van gaye, aur isi karan wo Ram ban bhi gaye.
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: इन ओडिशा there's a literary tradition, obviously older but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है, और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है, और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
1: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakha's Alarcha.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
1: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथूला मार्ग से यात्रा करेगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22वें ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7:00 भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Farmers' welfare, climate friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. The government had formed the High-Level Committee last month to assess demographic changes across the country and suggest measures to address these challenges. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. In a social media post, IAF said Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agnivir Vayu Khemaram Kumawat and Agnivir Vayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty. The IAF said a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of the Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 195 runs for India in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 182 for 3 in 22 overs when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचेंगे वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से स्लोवाकिया भारत सहयोग के नए अवसर खुलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फ्रांस में होने वाले G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे पांच दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की पाकिस्तान सरकार की आशंकाओं के बीच वहां विरोध प्रदर्शन तेज अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के बीच निर्णायक माना जा रहा है फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार
1: प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा दोनों देशों के लिए सहयोग के नए द्वार खोलेगी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सोमवार को ब्रातिस्लावा में श्री मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। फ्रांस की यात्रा के बाद श्री मोदी कल से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। श्री मोदी के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति पेलिग्रिनी से मिलेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऑटो विनिर्माण तथा रेलवे बुनियादी ढांचा में सहयोग पर चर्चा करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संभावना है कि श्री ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 सम्मेलन अमरीकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इनमें प्राकृतिक और सृजनात्मक कृषि पर संयुक्त शोध के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क बनाना, कृषि में यंत्र बुद्धि और डिजिटल तकनीक लाने के लिए ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क की स्थापना करना, बीज और परंपरागत बीज किस्मों के संरक्षण से जुड़े किसान अधिकारियों को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक मंच की स्थापना करना और ब्रिक्स एग्री एन नेटवर्क की स्थापना करना शामिल है। चौहान ने कहा कि भारत सरकार किसानों के लिए प्रति बोरी DAP 1350 रुपये और यूरिया 266 रुपये उपलब्ध कराना जारी रखेगी। इसका अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की पाकिस्तान सरकार की आशंकाओं के बीच वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कमेटी का कहना है कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से निपटना कठिन होता जा रहा है। इस बार विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि पूरे बलूचिस्तान में नागरिकों के विरुद्ध हिंसा बढ़ गई है। बलोच एकजहती कमेटी ने एक नागरिक के मारे जाने और 2 के लापता होने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए